ये फूल से चेहरे साथ लेकर रसूल मैदान में आ रहे हैं। ये अपनी अपनी जगह पे कैसे शमा की मानिंद चमक रहे हैं। ये नूर में नूर जम है ऐसे सभी मोहम्मद ही लग रहे हैं। ये वो है जिनको सलाम करने हमारा ईसा भी आ रहा है। ये फूल से चेहरे सा